0: ओ मेरो फुलवारी, अब के छ त भित्र?
1: के भित्र? को फुलवारी? म कि बहिनी?
0: बहिनी त साली, तिमी त मेरो फुलवारी।